0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

तेनू ओदे नाल मिलाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: यो हाँ जी 1674
1: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार। एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है, और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है।
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: भाने जी, क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरे दोस्त छुड़ाने चले आए,
0: और ये तीसरे दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: सतकाल, मैं हूं दिनी शेर गिल, से तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप हैं रेडियो जी 74। और को जिन्होंने रेडियो ये खोला है, मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको ये जो चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 16।

0: हाँ जी कोला सो चारे
1: ऑस्ट्रेलिया क्या भेजना ऑस्ट्रेलिया मंग डॉक्यूमेंट्स बैच या बिजनेस बस आम शिद और सिया पांच साल का इंटेल एक्सपीरियंस मेलबर्न दुबई सिडनी हेड पार्क विच वी स्पेशल ऑफर पाओ टेक ऑस्ट्रेलिया टू सिर्फ $250 विच किलो इन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $300 फ्री ठीक कर दे एड्रेस तक आई करो 0026688 हम थोड़े मुनाल मुद्दा मिल थोड़ी तरक्या सुरक्षित बना वादा है वेरी बीटा
2: टोयोटा दी बेस्ट जी कस्टमर सर्विस अति गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल नु हेल्प करने तुहाडे अपना चूज करन ने एक दहाके तो विटा दे नाल
1: बेस्ट डील करो 400 400 5 100 2216 ओल्ड लॉन्ग रोड फर्स्ट क्रॉस इट वेरी बीटा दिस चॉइस

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षर ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षर ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
3: अक्षर ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
1: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी ओए हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जी रेडियो।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हाँ जी 1674 AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
6: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: $2.95 सिर्फ $310 डिलीवरी सीधी कर दे एड्रेस तक। हुणे डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो।
3: सत श्री अकाल बादशाह, तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षर ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हां जी, 1674।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: यू आर लिसनिंग
3: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना,
0: डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुणे डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ,

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
3: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माधवन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी हां जी हां जी
1: हां जी हां जी रेडियो हां जी रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

स्वीट ग्रोवर, हांजी हांजी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हांजी AM।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै करंग
1: नाना बितकीनो विस्तार प्रभ बनासी एकंकार
0: नाना चलित करे खिन माहे पूरहे ओ पूर्ण सब ठाए
1: नाना बित कर बंत बनाई अपनी कीमते आपे पाई
0: सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ
1: नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मंड
0: नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के धारे आकाश पताल नाम के धारे सगल आकार
0: नाम के धारे पुरिया सा भवन नाम कै संग उदरे सुन सरवन
1: कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी
0: सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई
1: सत बचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत निरत बूझे जे कोए नाम जप ताकी गत होए
1: सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत
0: जिसकी सृष्ट सो कर नहार अबर न बूझ करत विचार
1: करते की मीना जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया
0: जिस मन बिसम पय बिस्माद जिन बूझा तिस आया स्वाद
1: प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे
0: कोई दाते दुख काटन हार जाके संग तरै संसार
1: जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग एकले गुलागी
0: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे
1: सुख मनि सुख अमृत पव नाम पग जन कैमन विश्राम अठ सोलां श्लोक
0: आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार
0: दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत आवनहार
1: आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभ बक्ता सुरत सत सत जा सुनता
1: पूजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जन मान्या कर करावन तिन मूल पछानिया
1: जाके हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस्मन प्रगटाया
0: पैते निर्भउ होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना
1: बस्त मैं ले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई
0: बूझै बूझन हार विवेक नारायण मिले नानके
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग
0: सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक सास सास सुमार है
0: अपने जन का पर्दा ढाक है अपने सेवक की सर पर राख है
1: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत राख है ताकि गत मित कोई न लाख है
1: प्रभ कै सेवक को न पहुंचे प्रभ कै सेवक ऊंचे ऊंचे
0: जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मैं कर राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है
0: जिसका सास न काटते आप ताको राख दे कर हाथ
1: मानस जतन कर्तव पात तिसके कर्तव्य व्यर्थ जात
0: मारे न राखे अबर न कोए सर्व जिया का राखा सोए
1: काहे सोच करे रे पानी जप नानक प्रभ अख बडाणी
0: बारम बार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मन तंत्र पिए
1: नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसके च अबर नाही दिसताया
0: नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम कसंग
1: नाम रस जो जन तपताने मन तन नामे नाम समान
0: उठत बैठ सोबत नाम कहो नानक जन कै सदकाम
1: लो जाचे वादन रात प्रभ अपने जन की नींदात
0: कलह भक्त आत्म कह चाए प्रभ अपने स्यो रह है समाए
1: जो हो आहो वसु जाने प्रभ ने का हुकुम पछाने
0: तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो
1: आठ पैर पर बसे हजूर है कहो नानक से जन पूरे
0: मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता
0: तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दरसा पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग
0: आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सतारा श्लोक
0: सत पुरख जन जानिया सत गुर तिसका नाओ तिसकै संग सिख उदर है नानक हर गुण गाओ सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: सत गुर सिखी करै प्रतपाल सेवक को गुरु सदा दयाल
0: सिख की गुर दुरमत मल हेरै गुर बचनी हर नाम उचरै
1: सत गुर सिखै बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै
0: सत गुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वड भागी है
1: सतगुरु सिक्का हलत पलत सवार है नानक सतगुरु सिक्को जी नाल सुमार है
0: गुर कै ग्रह सेवक जो रह है गुर की आज्ञा मन में सह है
1: आपस को कर कछ ना जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे
0: मन बेचै सतगुरु कै पास ते सेव के कार्ज रास
1: सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: विश्व विश्व गुर का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गत जान
0: सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्वनदान जी का दाता आठ पैर ਸਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਦਾਤਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ
1: ਸਹਿਰ ਸਿਆਨ ਪਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗਰੂੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ
1: ਸੰਗਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ
0: ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੁਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ
1: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ
0: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਜੇ ਵਾਏ ਕੁਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇ
0: ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ
1: ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ
0: ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰ ਹੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਮਰ ਹੈ
1: ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ
0: ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ
1: ਪੁਰਤਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪਟੇ ਗੁਣਤਾਸ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇ ਸੇਵਕ ਕੌਦੇ
1: ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ
0: ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਭਰ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿਤੇ ਨਾਸੇ
1: ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ
0: ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ੇ
1: ਪਾਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ
1: ਹਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭਉ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਾਜਾ ਸਰਵਨ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ
1: ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾ ਬਨਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ
0: ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ
1: ਪੋਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪੈ ਪ੍ਰਗਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
0: ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਅਠਾਰਾਂ ਸਲੋਕ
0: ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵ ਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
0: ਅਵਰੋ ਪਾਸਾ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮੈਂ ਉਰਧਾਰ ਹੋ
1: ਕਰਨ ਕਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਥ
0: ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ
1: ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾ ਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵ ਹੈ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ
0: ਜੇ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣੀ
1: ਅਨਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਖ ਦਲਾਏ
0: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ
1: ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦਰਦ ਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ
0: ਕਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ
1: ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ
0: ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ
1: ਸਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮਫਾਸੀ
0: ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਰਹਿ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ
1: ਆਵਾ ਗੁਣ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ
0: ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ
1: ਅਨਕੋ ਪਾਵਨ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ
0: ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ
1: ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ
0: ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟਾਂਬਰ ਬਨ ਤੈਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ
1: ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ
0: ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ
1: ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
0: ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੋਂ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ
1: ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ
1: ਆਪ ਜਪਹੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਓ
0: ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ
1: ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤ੍ਰਿ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿਖ ਫੈਲ
0: ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗਰਾ ਸਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ
1: ਛਾੜ ਸਿਆਨ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਸ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਸਜਤਨਾ
0: ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗੈ ਜੈਕਾਰ
1: ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਤ ਕਲੇਖ
0: ਏਕੋ ਜਾਪੇ ਕੋ ਸਾ ਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ
1: ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮੰਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ
0: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪ
1: ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭੈ ਏਕ ਅਰਾਧ ਪਰਾਛਤ ਗਏ
0: ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਤਾ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਉੱਨੀ ਸਲੋਕ
0: ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ
0: ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਤੇ ਆਓ
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤਨੀਤ
1: ਏਕੋਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ
1: ਜਿਨ ਚਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾ ਨੇ
0: ਸੋ ਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੈ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਪਰੈ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ त्याग अंतर प्रगास अंध निर्लाग
0: बड़भागी जपया प्रसोए नानक नामरते सुख होए
1: सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत ले
0: जन को प्रभ होए ओ दयाल सेवक कीनो सदा निहाल
1: बंधन काट मुकुत जन भया जन्म मरण दुख परम गया
0: पिछ पुनी शरदासा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी
1: जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए
0: सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै
1: सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया
0: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै
1: सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै
0: गुरपूरै ताते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया
1: साजन संत करो काम आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो
1: पाए त्रिये संसार बिन भक्ति तन होसी चार
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम बूट जात पाए विश्राम
1: सगल दुख का हो तनास नानक नाम जपो गुण तास
0: उपजी प्रीत प्रेम राष्ट्राओ मन तन अंतर एही सुआओ
1: नेत्रो पे तरस होए मन बिकसै साधु चरण तोए
0: भक्त जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग
1: एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया
0: ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए
1: प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल
1: आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार
0: जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन ही
1: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए
1: अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन भाई
0: बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत
1: पलि सुकरनी शोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत
0: सार संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठवी श्लोक
0: सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जब अकार कुछ न दृष्टि ताप पुण तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वरण चिहिना जापत तब हर सो को किसे व्याप्त
0: जब अपन आप अपार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम
1: अपन खेलिया वर्ती जा नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्राप्त केवल तानी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी
1: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्राप्त सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
0: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
1: अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तम कौन छुटे कौन बंधन बादे
1: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
0: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तूता
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
0: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस
1: जह जो स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भू कौन तृप्तावै
0: कर्ण करावन करनै हार नानक करते का नाही सुमार
1: जापनी सुवा आपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई
0: जह सर्व कला आपह परवीन तह वेद कतेव कहां कोचीन
1: जब आपने आप उतारै तो सगन अपसगन कहां बिचारै
0: जह आपन ऊंच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप
0: जह अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया
1: आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश
0: जह एक है एक एक भगवानता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जह आपन आप पतियारा तह कौन कथे कौन सुन नहारा
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
1: जह आप रचियो पर पंच आकार तेह गुण में कीनो विस्तार
0: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत
1: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पैपार
0: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान
1: अपन खेल आप कर देखै खेल संकोच है तो नानक एक है
0: जह अवगत भक्त है आप जह पसरै पासार संत प्रताप
1: का आपै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आप है कौतक करै आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग
1: जिस भावै तुस अपन ना लावै जिस भावै तुस खेल खिलावै
0: बेशुमार अथा अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै
1: सुख मनि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक्की श्लोक
0: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
0: जा तिस भावै ता सृष्टो पाए अपने भाणे लए समाए
1: तुम ते पिन्ने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्रभ जी जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
0: जी जंतर सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे
0: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सिरे एक निरंजन राए
1: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ
0: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
1: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
1: तत पाले जीन बो पात जो जो रचियो सुत सहत्यार
0: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया
0: जन लागा हर इक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
1: सेव को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार
1: बंधन तोर पै निर्वैर अंधन पूजे गुर के पैर
0: यह लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप मेले
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
0: राम नाम तत् करो हो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
1: अमृत बचन हर की गुण गावो प्रांत नुनकाए हे सुआओ
0: आठ पहर प्रापी खुह नीरा मिटे अज्ञान बिन सहंदीरा
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
0: हलत पलत दोइले हो सवार राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमन बसै ते साच परीखिया
0: मनता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभ खेप तुम्हारी
0: टीका टीक रखो मन माही नानक बहुर न आवे जाहे
1: इसते दूर कहा को जाए उबरे रख न हार ते आए
0: निर्भउ जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस प्रभु राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कै कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रिष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल
0: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भल जना कै मन विश्राम अठ बाई श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
0: सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
1: नौनद अमृत पव का नाम देही में इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहत नाद कह न जाई अचार्य विस्माद
1: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिसन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
1: करण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: वंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे
0: तिसते भिन्न नहीं को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
0: वाणी प्रभु की सब को बोलै आप अडूल न कबहू डूलै
1: सर्व करा कर खेलै खेल मोल न पाइए गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी जो धार हे ओ स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं एहो विसास
0: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सो इश्क माने करन करावन हर प्रभु जाने
0: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत
0: तिस पावे ता करे विस्थार तिस पावे ता एकंकार
1: अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन लिप्त कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर
1: अंतरगा जिसे आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए
0: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: सबके मदल पत्तो रह जो कुछ कहना सो आपे कह
0: आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता लय समाए
1: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो हो किने कुछ करा
0: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
1: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राज
0: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
1: जानावन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
0: पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
0: सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस नित्या गो तरंग संत जना की दूर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो साध संग आगन सागर तरहो
1: हर तन के भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
1: नरक निवार उद्धारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपा
0: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन अमोलीक लाल एह रतन
0: संत कमावत हो तो उधार आप तरह लोकह निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै
1: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरै तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर पै सबरेन अमृत नाम साध संग लैन
0: सो प्रसन्न भए गुरदेव पूर्ण हुई सेवक की सेव
1: आल जंजाल बिकार तिरै ते राम नाम सुरसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभि खेप हमारी
1: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान
1: हर दिन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
0: ते फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
1: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
1: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभु चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै
0: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से वै परम साध नाम निर्मलता के करम
0: सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम अठ चौबी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को जब एक नए परिपेक्ष में देखना शुरू किया, एक सबसे बड़ी बात जो रिश्ते आज कहीं न कहीं बहुत मुश्किल होते जा रहे थे, लगता था कि उनपे बहुत काम करने की जरूरत है, कैसे ये रिश्ते सही हो सकते हैं, एक जो हमें स्ट्रेंथ मिली, जो ताकत मिली, वो ये कि जो इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूं, जिस रिश्ते में मैं हूं, वो मैं खुद कर सकता हूं। वो इमेज क्रिएट करने के बाद जो वाइब्रेशंस जाने शुरू होती हैं, तो अपने आप खुद ब खुद वो रिश्ते सुधरने लग सकते हैं। ये हमने कहा था हर बार की तरह के अनुभव करके देखें, क्योंकि जो जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते जाएंगे उनका अनुभव हमें सुदृढ़ करता जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। आगे और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते जो इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो हमें बहुत आश्वासन मिला है आपके साथ जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कि वो रिश्ते जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता, चाहे वो बच्चे के साथ का रिश्ता है या बॉस के साथ का भी रिश्ता, एक जो हमें ये मिला कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। जहां हम बिल्कुल हताश हो गए थे, हमें लगता था कि इसमें कोई चांस नहीं है, देयर इज नो अदर वे, आई डोंट हैव अ चॉइस, वहां ये रास्ता दिखा और अपने ही हाथ में होता हुआ दिखा। अब ठीक है, टाइम लगेगा, भी काम कर सकती हूँ मैं उसके ऊपर। आज थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
1: तो सबसे पहला सूत्र जो हमने देखा कि वेयर डज द रिलेशनशिप स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इन माय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में जब दूसरे का चित्र निर्माण करे, तो ध्यान से करें कि कौन से कलर्स यूज करते हैं और कोशिश करें कि उनकी एक एक विशेषताओं के रंग से लेट अस क्रिएट दैट पिक्चर इन आवर कॉन्शियस।
0: मैंने देखा, हमने मतलब देखा है हमने, जब तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है जब हम दूसरे की इमेज गंदी वाली क्रिएट कर रहे हैं,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई इट मस्ट बी हैपनिंग, बट इट मस्ट बी, मे बी इट मेक्स मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ,
0: कि मैं ठीक,
1: दैट कुड बी द ओनली लॉजिक, अदरवाइज और कोई लॉजिक ही नहीं उस पर बैठता। जस्ट बाय सेइंग कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इट गिव्स मी द फीलिंग दैट आई एम बेटर, और दूसरा इट ऑल्सो शायद गिव्स मी द परमिशन टू रिएक्ट विद योर बिहेवियर, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जब मैं संपर्क में आ रही हूँ तो आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। मैं कभी गुस्सा हो रही हूँ आपके साथ, कभी आपके साथ मैं परेशान हो रही हूँ, कभी आप पर मैं चिढ़ रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ व्हेन आई कम इन इंटरेक्शन विद यू, लेकिन वो सब मेरा जो व्यवहार है वो जस्टिफाइड कब होगा?
0: जब मैं ये कहूँ कि आप तो हो ही खराब,
1: नहीं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप अच्छे हो और मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर कौन खराब हो गया?
0: मैं।
1: सो दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम।
0: तो दोनों में से एक तो खराब होगा ना,
1: क्योंकि मेरा व्यवहार मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरा व्यवहार ऐसा है क्योंकि आप ऐसे हो। सो दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है, उसके लिए पहले मुझे अपनी सोच को चेंज करना है, उसके लिए मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, क्योंकि समवेयर इट डिपेंड्स ऑन विच कलर स्पेक्स आई एम वेयरिंग। आपने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना मैंने कौन से रंग का चश्मा पहना।
0: अगर आपने लाल पहन लिया तो ये ग्रीन भी आपको लाल दिखे।
1: यस, एंड फिर आपको उस लाल रंग के चश्मे से देखते हुए मुझे आप लाल ही दिखाई देंगे, और फिर मेरा रिश्ता किस कलर से जुड़ा? रेड से जुड़ा, बट एक्चुअली तो आपने ग्रीन पहना है। तो समवेयर माई रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द राइट फाउंडेशन। सो इट्स नॉट अबाउट आप कौन से रंग के हैं, इट्स अबाउट मेरा जो परसेप्शन का चश्मा है वो कौन से कलर का है। और जैसे आपने कहा कि हम ज्यादा क्यों नेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि अगर हम जितना नेगेटिविटी का चिंतन करते जाएंगे तो हमारा चश्मा कौन से रंग का हो जाएगा?
0: नेगेटिव।
1: अब आपके अंदर हो सकता है बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मेरा चश्मे का रंग ही नेगेटिव है, तो आप मुझे कैसे दिखाई देंगे?
0: कम्प्लीटली नेगेटिव।
1: एंड फिर मेरा जो रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ेगा वो किस आधार पर होगा? बेस्ड ऑन दैट कलर दैट आई हैव क्रिएटेड विथ यू। तो यस, बहुत इजी है कहना कि वो है ही ऐसे, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने ऊपर बैठकर वर्क करके अपने परसेप्शन को चेंज करना। चॉइस इज माइन। क्योंकि जितनी बार आई एम गोइंग टू से वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी and I am transmitting negative energy and then I will receive नेगेटिव एनर्जी एंड देन आई विल स्टे इन पेन एंड ये पूरा प्रोसेस मैंने क्रिएट किया। अब अगर मैं दर्द की बजाय खुशी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ तो मुझे अपने चश्मे का रंग चेंज करना पड़ेगा। रिलेशनशिप मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो हर स्टेप पर चेक करते जाए मैं कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूँ। स्टॉप थिंकिंग वो कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेट्स से कि आपके अंदर 99 कमजोरियां हैं, फिर भी एक विशेषता तो होगी। अच्छा, इफ यू आर फाइंडिंग समवन, होगा नहीं, लेकिन यू आर फाइंडिंग समवन जिसके अंदर कोई विशेषताएं नहीं है, तो भी मैं कौन सी एनर्जी फिर उसको ट्रांसमिट करता हूँ, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन माई कॉन्शियसनेस। हम जो दृष्टिकोण से दूसरे को देखते हैं वो उस पर भी डिपेंडेंट है कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, बिकॉज वो मेरे चश्मे का कलर है।
0: इन दैट केस मैं पूरी दुनिया को भी एक्चुअली किस कलर से देखता हूँ।
1: एंड दैट्स वाई सेम दुनिया एंड समवन विल से द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल एंड समवन विल से द वर्ल्ड इज अ बिग मेस।
0: एक्चुअली यस, यू नो अगर हम डीप में जाएं, जिसको बुराई देखने की आदत है, जो बुराई करता है वो सबकी ही बुराई कर रहा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता उन्हें,
1: तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन मुझे ही देखने का नजरिया। और इसीलिए परमात्मा ने आकर हमें कहा कि स्व परिवर्तन करेंगे तो विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। हमें औरों को चेंज नहीं करना, हम अपने एटीट्यूड को, अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं तो वही लोग, वो वैसे के वैसे होते हैं, दे डोंट चेंज, वही लोग हमें अलग दिखाई देने लगते हैं। व्हाट हैज हैपेंड, वेयर हैज द चेंज टेकन प्लेस, इट्स हियर। So it is very easy to look outside, little challenging to look inside, lekin solution yahi par
0: hai. Yes.
1: To agar koi apne upar sachmuch mein kaam karke result pana chahta hai to usko fir kaam to wahi karna padega jahan kaam ho sakta hai. Aap opposite direction mein kaam kare, you work on the relationship there and fir aapko result nahi mile, fir aap aur frustrate hote jaye aur fir aap aur ek dusre se katte jaye, we are getting nowhere.
0: Actually very true, you know, हम कोशिश जब हम करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ आज आएंगे तो मैं ठीक रहूंगी, और फिर मैं ठीक ठीक बिहेव कर रही होती हूँ, मैं सही बातें बोलने का प्रयास कर रही होती हूँ और मैं बोलती भी हूँ सही, लेकिन तब भी वो रिश्ता ठीक नहीं हो पाता क्योंकि
1: सोचते। आप देखो, हम सब ने ये आर्ट सा मास्टर कर लिया है कि अंदर भले हम नेगेटिव सोचते हैं, उसको कन्वर्ट करके हम पॉजिटिव बाहर देते हैं, क्योंकि हमने सोचा रिश्ता मतलब क्या, कम्युनिकेशन, रिश्ता मतलब जो मैं आपसे बोलती हूँ, रिश्ता मतलब जो मैं आपके साथ करती हूँ, रिश्ता मतलब जो हम एक दूसरे के प्रति सोचते हैं। तो कहीं भी कोई भी रिश्ते में अगर कहीं ऊपर नीचे आ रहा है, जस्ट स्टॉप एंड सी कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नहीं इम्पोर्टेंट। आप देखो, हम जब सोचते भी हैं सारा दिन तो हम ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई फील कि मैं अच्छा तब फील करूंगी जब आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, बट एक्चुअली मैं अच्छा तब फील करूंगी जब मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ। नो डिफिकल्ट,
0: नो नो नो, यस एक्चुअली
1: सी, हाँ, जस्ट सी द कनेक्टिविटी। आई एम थिंकिंग कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो, आप मेरे बारे में अच्छा सोचो तो मुझे अच्छा लगेगा, बट एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस, एनर्जी इज फर्स्ट फ्लोइंग लाइक दिस। तो मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोचूंगी तो सबसे पहले मुझे अच्छा फील होगा।
0: ऑफकोर्स अगर वेरी ट्रू, अगर कोई मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई देख के, मतलब इफ आई लुक एट यू एंड आई फील गुड अबाउट यू,
1: आई फील गुड, या I feel good. Now it is possible ki I don't think very good about you. It is possible ki I don't think very good about you. Ya mera vyavahar bhi shayad aapke sath utna acha nahi hai. Fir bhi aapko kaisa feel karna hai, wo fir bhi aapke hath mein hai. So let's start just working on myself. Take the control back. I am going to keep the control in my hand. पर अपने पर फोकस नहीं होगा तो ध्यान ज्यादा क्या होगा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे बारे में क्या बोलता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, एंड देन आई कंज्यूम दैट एनर्जी। वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, वो मेरे बारे में ऐसा सोच, और ये सब कंज्यूम करके वो अच्छे नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट वो अच्छे नहीं है, एंड बुरा किसको अब फील होने वाला है?
0: मुझे, क्योंकि नहीं और होने लग जाता है ना, बिकॉज इट हर्ट्स सो डीपली कि उन्होंने मेरे बारे में ये कहा, यू नो दे थिंक दिस वे अबाउट मी, मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, और फिर मैं उनके बारे में अगर अच्छा सोचते भी होंगे तो उनके बारे में बुरा सोचूंगे.
1: एग्जैक्टली. सो अगेन,
0: मैं उनके बारे में अच्छा सोचती थी, मैं उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं.
1: भले ना वो मेरे बारे में सोचे, मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे क्या सोचना है. दैट्स व्हाई द फोकस बिकम्स मैं एंड मैं.
0: लेकिन सोच क्या रही हूँ? yes. फोकस अभी भी मैं ही था,
1: मैं ही था, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ. पहले फोकस ये था कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में. तो पहले वो था कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज माई फीलिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन यू. बट नाउ आई रियलाइज्ड माई फीलिंग इज माई क्रिएशन. That is what was important. Let's say आपने green साड़ी पहनी है, feel good about that. If you feel good, then that's your creation. अब ये जरूरी नहीं है कि दुनिया आकर उसको praise करे. उसमें क्या होगा, अगर चार लोग appreciate करेंगे, दो लोग criticize भी करेंगे. लेकिन अगर मेरी मन की स्थिति बार बार ऐसे fluctuate होने वाली है, then मेरे हाथ में क्या है. लेकिन अब जब हमें समझ में आ गया कि क्रिएट हम करने वाले हैं, आई कैन चूज वॉट टू क्रिएट एंड बी वेरी केयरफुल सारा दिन. आई एम क्रिएटिंग, जस्ट दैट मच अवेयरनेस इज नीडेड सारा दिन कि आई एम क्रिएटिंग. तो जर्नी कैसे हो जाएगी? वेरी सिंपल. द फर्स्ट पॉइंट था कि वेयर डज द रिलेशनशिप गेट क्रिएटेड, अपनी कॉन्शियसनेस में. दूसरा पॉइंट बहुत जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, जो हमने कई बार रिपीट किया है लेकिन वो फंडामेंटल है, एंड दैट इज हु हर्ट्स हु.
0: I hurt myself. ये तो एक पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही है.
1: ये लेकिन जितना प्रोफाउंड ये स्टेटमेंट है, उतना ही ये प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट लगता है प्रैक्टिस करने के लिए. क्योंकि जब भी हम रिएक्ट करते हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
0: आपने हर्ट किया,
1: आपने हर्ट किया. तो हु हर्ट्स हु? आई हर्ट माई सेल्फ. दर्द मैं अपने आप को दे रही हूँ. ये जितनी बार हम बार बार अपने आप को समझाएंगे, तो हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा.
0: और इनफैक्ट फिर मुझे उन्हें समझाना तो पड़ेगा. अगेन यू नो, मुझे समझाना ये नहीं करना कि मैं उनको अपने आप को जस्टिफाई ना करूं, भी कोई मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन बिना हर्ट हुए
1: स्टेबिलिटी.
0: हाँ, अगर मैं कह पाऊं कि थी, इट वॉज नॉट लाइक दिस,
1: दैट्स ओके, दैट इज फाइन. लेकिन आई हैव टू रिमेम्बर कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं खुद अपने आप को हर्ट कर रही हूँ. इमोशनल हर्ट ये कोई और मुझे नहीं कर सकता है. फिजिकली कोई मुझे मार सकता है, लेकिन यहां तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता. यहां ओनली आई हैव द टोटल कंट्रोल. बार बार जब भी वो दर्द थोड़ा सा भी क्रिएट होना शुरू हो, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, वर्क, मूव अहेड. लेकिन जहां मैंने बोला दे आर हर्टिंग मी, तो वो दर्द तो कभी तक चलता जाएगा. वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि सामने वाला जो बोल रहा है वो परफेक्ट बोल रहा है. ठीक है, मे बी यू आर नॉट फाइंडिंग कि जो वो बोल रहे हैं दैट्स राइट फॉर यू, लेकिन हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है? आपको पता है, यहां हमने एक लिस्ट बनाई होती है किन लोगों ने हमें हर्ट किया है, और काफी लिस्ट होती है,
0: काफी बड़ी होती है.
1: हाँ, और उस लिस्ट को हमने काफी समय से पकड़ा हुआ होता है. एंड टूडे इफ आई जस्ट सिट बैक विद माई सेल्फ एंड आई से हु हर्ट मी एक्चुअली, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, कोई मेरा लाखों लेकर चला गया, किसी की वजह से तो मेरा बिजनेस ही पूरा कोलैप्स हो गया, किसी ने मुझे रिश्ते में धोखा दे दिया, व्हाट इज आई से, बट हुज क्रिएटिंग द पेन? उन्होंने जो करना था सो किया. राइट और रॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ. इम्पोर्टेंट इज दर्द फिर भी कौन क्रिएट कर रहा है, कब तक? सी, बाहर आप जो कर रहे हो आप कर रहे हो, बट देन यू आर नॉट इन माई कंट्रोल. यू नो, यू आर नॉट. अगर आज आप मेरे साथ प्रॉपर्टी पर लड़ रहे हो, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल. आज आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन के मेरा लाखों रुपए लेके चले गए, नॉट इन माई कंट्रोल. आज आप एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में आप रिश्ता तोड़कर बाहर कहीं चले गए, नॉट इन माई कंट्रोल. लेकिन माई पेन,
0: इट इज इन माई कंट्रोल,
1: दैट्स आई एम क्रिएटिंग. तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट. क्योंकि जहां सेल्फ पर मैनेज किया, तो फिर सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाएगा. अभी हम कहते हैं सिचुएशन इतनी बड़ी थी, दे कॉज्ड मी हर्ट. नो, देयर इज ओनली वन वर्ड देयर हु कॉजेज पेन टू मी, दैट्स माय सेल्फ. दे कैन डू थिंग्स, जो उनको करना है वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन दर्द फिर भी मैं क्रिएट करता हूँ. मेनी पीपल विल से, लेकिन आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया. किया फिर भी दर्द किसने क्रिएट किया?
0: क्योंकि दर्द मुझे इसका हुआ कि वो चला गया, या दर्द मुझे इसका ये हुआ कि उन्होंने मुझे धोखा दिया. यू नो, सो धोखा दिया एक सिचुएशन, लेकिन वो
1: दर्द किसने क्रिएट किया?
0: हाँ, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ. यस, वेरी ट्रू. यू नो,
1: इट्स ओके इफ आई एम इन पेन, लेट मी वर्क एंड मैं उसको हील करूंगी. लेकिन मैं उसको हील तभी कर पाऊंगी जब आई रियलाइज कि ये दर्द मैं क्रिएट कर रही हूँ. हम कई बार जीवन भर उस दर्द को इसलिए पकड़ के रहते हैं
0: कि मैंने उसी ने किया,
1: उसने हाँ. किया तो वो आकर उसको ठीक करेगा.
0: जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, कहते हैं ना हर बार.
1: ठीक है, तो अब किसने दर्द दिया? हमें ही दवा देनी है ना. That is the point. We are not saying कि हाँ दर्द होता है, कुछ बात ऐसी होती है.
0: What happens? We keep on waiting that that person will come and apologize or things like that, and then things will, and, but things will never become same.
1: Yeah.
0: Even if that person comes, और वो माफी मांग के मुझे हील करने की कोशिश करता है, मैं क्या हील होंगी? मैंने मुझे वो पूरा टाइम गुजारा है, मैं उसको कह के मैं ना उसको जीने दूंगी ना खुद जीऊंगी,
1: क्योंकि मैंने इतना दर्द क्रिएट किया हुआ है. अब मेरे पास देने के लिए क्या है उस रिश्ते में? दर्द ही है. तो इसलिए एक दिन बैठ कर आज ही रात को सोने से पहले उस लिस्ट को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आए. हाउ मेनी पीपल हैव हर्ट मी इन माई लाइफ, एंड देन डिलीट
0: वाइप ऑफ कम्प्लीटली एक्चुअली,
1: एंड यू विल बी एबल टू वाइप ऑफ. वी आर नॉट सेइंग दैट द पेन विल गो अवे. Maybe not immediately,
0: but I think that person
1: that
0: will go away.
1: Person will go away. That is fundamental. First, let the person go away. फिर तो pain धीरे-धीरे जल्दी खत्म हो जाएगा. क्योंकि मैं creator हूँ तो मुझे finish करना easy है. लेकिन आप creator हैं
0: तो फिर वो तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक, जब तक उसके साथ वैसा नहीं होगा तब तक नहीं. You know, like so many things we have.
1: Yeah. So, एक-एक को लेते जाओ. Situation को rewind करना चाहते हो एक दिन के लिए कर लो. रिवाइंड करो और फिर भी देखो कि सिचुएशन बाहर थी, दर्द यहाँ था. डिवोर्स बाहर था, दर्द यहाँ था. बिजनेस कोलैप्स बाहर था, दर्द यहाँ था. हुए बहुत साल हो गए और दर्द तो अभी तक पकड़ा हुआ है. आज भी एक रिवाइंड बटन दबाओ और सारा कुछ.
0: बिकॉज
1: वी कैन क्राई राइट हियर.
0: यस, आई कैन, ऑफ कोर्स.
1: सो वेयर इज द पर्सन? वो व्यक्ति तो अभी है भी नहीं, बट वी कैन क्राई राइट हियर.
0: बिकॉज यस, यू नो, समवेयर डीप विद इन आई केप्ट ऑन फीलिंग दैट ही इज द ओनली वन हु कैन हील, शी इज द ओनली वन हु कैन कम चेंज द सिचुएशन और डू समथिंग.
1: तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ
0: भी नहीं, और वो कभी भी नहीं आने वाला.
1: एंड फिर हम जीवन दर्द में ही बिताएंगे. तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से ले लेंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ द पेन, आई हर्ट माई सेल्फ, तो अपने आप को ठीक करना बहुत इजी हो जाएगा.
0: फर्स्ट इज लाइक वाइंडिंग अप दैट पर्सन,
1: जस्ट लेट गो. बिकॉज वो लोग हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनको यहाँ क्यों घर में बिठा कर रखा
0: है? सालों पुराने होंगे. मतलब सी आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई कैन एक्चुअली स्टिल रिमेम्बर
1: ऑल द पीपल देयर,
0: लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मतलब आई एम नॉट इवन इन टच. लेकिन वो उनकी इमेज है,
1: वो फिर भी आपके घर में रहते हैं. लेकिन यहाँ
0: घर पर रहते हैं और मतलब वो जब तक मैं उनका डिलीट नहीं करूंगी अपने उससे, तब तक वो रहेंगे.
1: यस. नाउ अगर आपको अभी भी किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी मुश्किल लग रही है, इट्स ओनली बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आई एम क्रिएटिंग द हर्ट. आई एम क्रिएटिंग द हर्ट. जैसे ही हम अपने ऊपर इस एंगल से वर्क करना शुरू कर देंगे, तो हम दर्द को खत्म करना शुरू कर देंगे. अब आपने तो जो किया सो किया, बट इफ आई गेट हील्ड तो मेरा आपके साथ रिश्ता कैसा हो जाएगा?
0: हाँ, बिल्कुल परफेक्ट.
1: एंड रिलेशनशिप
0: आपके साथ, मुझे वो खत्म हो जाएगा ना. आपसे जो उम्मीद थी या आपसे ये एक्सपेक्टेशन,
1: और आपके ऊपर जो ब्लेम था.
0: हाँ,
1: पहली बात, आपके ऊपर जो मैंने ब्लेम लगाया था कि आप मेरे दर्द का कारण है, वो खत्म हो जाएगा. तो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. आई हैव टू ओनली फॉरगिव माई सेल्फ. एंड अगर हम दूसरे को भी देखते हैं कि दूसरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये हमने पहले भी देखा कि आई क्रिएट माई पेन एंड इसी तरह यू क्रिएट योर पेन. मैं आपका भी पेन क्रिएट नहीं करती हूँ. सो सिमिलरली इफ आई सी यू इन पेन
0: बिकॉज ऑफ मी,
1: एंड अगर आप दर्द में बहुत कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्मृति है कि आप दर्द में हैं बिकॉज ऑफ योर ओन पेन, तो मुझे स्टेबल रहना मेरे लिए आसान है. और उसके बाद अगर मैं स्टेबल रहूं तो मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा हो जाएगा?
0: normal, stable,
1: normal. So everything just seems to fall into place.
0: Mm.
1: Not that it will get done today, but it becomes easier. ये करना संभव हो जाता है जब मुझे ये पता चलता है मुझे सिर्फ अपने को हील करना है दूसरा जैसा है वैसा ही है लेकिन वो तो ऐसे बात करते हैं करने दो लेकिन वो तो मुझे अब्यूज करते हैं ये करते हैं करने दो When I change, the world changes. Automatically stability आएगी दूसरी तरफ लेकिन एक साइड भी दर्द में जाता फिर दूसरी साइड भी जाता तो दर्द की फ्रीक्वेंसी
0: It feels so good. मैं बात करते करते ही आई कैन सी सो मेनी रिलेशनशिप्स बिकमिंग मच बेटर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बाप बेटे का रिलेशनशिप यू नो कहीं एक जो एक कहा जाता था एक चुप कर ले और दूसरा It can
1: Absolutely.
0: Happen. It happens.
1: And no one can hurt me. I met a brother and उसने अपनी मदर से बहुत सालों से बात नहीं की थी because कुछ हुआ था past incident. And फिर वो program के end पर आए और उन्होंने कहा कि my mother is in lot of pain and I am in lot of pain and अब मेरे father नहीं रहे and my mother is alone and you know whatever. I said आप अपनी मदर से जाके बात क्यों नहीं कर लेते and you know everything will become okay. And he says नहीं but आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया उन्होंने ऐसा किया उन्होंने वैसा किया I said लेकिन उन्होंने जो किया सो किया हम अब क्या कर रहे हैं आप इतना जो दर्द अपने अंदर अब क्रिएट कर रहे हैं ये पहले आपको मिल रहा है फिर आपकी वाइफ को मिलेगा आपके बच्चों को मिलेगा वो एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है वो दर्द औरों में भी जाता है टू फिनिश दिस हाउ मच टाइम विल इट टेक हाउ मच टाइम गो टॉक एंड इट्स फिनिश्ड ही डिड इट आफ्टर द प्रोग्राम ही वेंट देयर नेक्स्ट डे ही केम फॉर अनदर प्रोग्राम चलिए तो बहुत ईजी था क्योंकि होता तो बहुत ईजी है ना बट हमें टाइम लगता है दैट्स ओके That is my journey. I can take my time.
0: Actually, जिस दिन ये realize हो गया कि वो कारण है ही नहीं मेरी pain.
1: मैं हूँ और वो मेरे हाथ में है अब मुझे कितनी जल्दी उसको finish करना.
0: तो ठीक है फिर मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ मेरे को 10 दिन चाहिए मुझे 1 दिन चाहिए मुझे 100 दिन चाहिए मुझे 1 second चाहिए
1: Whatever. That's my choice. But at least the power
0: is in my hand now.
1: अब मैं अपने रिश्ते को जब चाहूँ तब ठीक कर सकती हूँ पहले आई वॉज अ विक्टिम तो मैं वेट कर रही थी और फिर मुझे सारे रिश्ते उल्टा बिखरते हुए दिखाई दिए क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि दूसरे लोग उनको ठीक करेंगे सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अ विक्टिम कि मेरे साथ तो कोई भी ठीक नहीं है
0: मुझे कितने सारे जो सीन्स हैं वो रिवाइंड होके बेटर रिश्ते दिखते हुए नजर आते
1: हैं बिकम्स वेरी वेरी इजी So the second important point is who hurts who. I have to always remember I hurt myself. तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो labels हम लोगों को लगा देते हैं तो एक बार मैंने label लगा दिया कनुप्रिया ऐसी है लगा दिया अब आपके ऊपर label. अब हर रोज के interaction के बाद मैं उस लेबल के अंदर
0: एक एक इंसिडेंट
1: बैगेज भरते जाते उसने ऐसा किया उसने ऐसा बोला
0: देखा ये जस्टिफाई हुआ ये पुख्ता हो गई मेरी बात ये लेबल ठीक हो गया
1: हाँ, तो मैं वो लेबल लगाकर रोज उसमें बैगेज बैगेज भरते जाती हूँ एंड जितना समय हम इस बैगेज को पकड़ कर रखेंगे उतना वो बैगेज
0: भारी होता
1: जाएगा एंड इट कैन रीच अ स्टेज वेर आई कैन स्टिंक इनसाइड बिकॉज आई हैव सो मच बैगेज
0: तो मुझे ले डूबेगा ना वो भारी होगा कि मैं डूब जाऊँ
1: एब्सोल्युटली तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पहले तो अभ्यास कर दिया है लेबल्स लगाने का तो कहीं ना कहीं तो वो लेबल्स ही हम लगाना बंद करें लेकिन उसमें फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अब टाइम लगेगा इस यात्रा पर लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम हर रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि एक एक लेबल के साथ बैगेज आज हमने क्या ऐड कर दिया था इज इट पॉसिबल कि मैं वो बैगेज निकाल कर फिनिश करूं उसको हल्का करूं क्योंकि वो निकालने से हु इज गोइंग टू फील बेटर
0: आई विल फील
1: दिस इज मोर अबाउट यू नो होल्डिंग थिंग्स अबाउट अदर पीपल तो इफ आई कीप होल्डिंग दोज थिंग्स यहां बहुत भारी होता जाएगा और फिर मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी कि मुझे एक्चुअली क्या करना है क्योंकि मेरा ये सारा बैगेज तो और लोगों से बहुत भर जाएगा तो बहुत इजी है इसको अगर सारा दिन में हम कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही हम कुछ भरने लगे यहां ये तो ऐसे हैं स्टॉप नो आई डोंट नीड दिस दिस इज अननेसेसरी वेट आई एम नॉट गोइंग टू कैरी सो मच वेट तो एंड ऑफ द डे कैसा फील होगा
0: लाइट
1: I will feel very, very light. तो baggage जो परमात्मा शिव बाबा भी कहते कि ये इतना बड़ा बोझ जो लेकर सारा दिन चलते हो, इसको हल्का करो. And baggage is always about
0: others.
1: जो मुझे लगता है कि हाँ नहीं मुझे कैरी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो मैंने जस्टिफाई करते जाती हूँ अपने आप को कैरी करना. तो कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही वो बैगेज रखने लगे उसी टाइम ही, क्योंकि ये बैगेज इतना भारी हो सकता है कि यहाँ तो दर्द देगा ही देगा, लेकिन यही बैगेज एक ना एक दिन कोई फिजिकल बीमारी का भी कारण बनता है.
0: और इनफैक्ट आजकल हम जितनी भी फिजिकल बीमारियां हैं उसमें पीछे कहीं ना कहीं जो मेंटल इलनेस है वो है.
1: कोई ना कोई हर्ट, कोई ना कोई गिल्ट, कोई ना कोई रिजेंटमेंट ये पकड़ के रखा, 5 साल 10 साल 20 साल इसको पकड़ कर रखा हुआ है, आज वो बीमारी का रूप ले लिया. वो तो वही है, तो वाई है अब सफर किसको करना पड़ेगा. मी वाई जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम कैरिंग
0: सो मच बैगेज. यस,
1: तो क्यों ना रोज ही, इसीलिए हमने कहा कंप्यूटर की स्कैनिंग, इसलिए जो हम वो हर एक घंटे के बाद 1 मिनट करते हैं ना, तो रात को भी क्यों हल्का करना है. हर एक घंटे के बाद ही अगर कुछ ऐसा भर गया हो, स्टॉप, इट्स ओके, वो जैसे हैं वैसे हैं, आई डोंट नीड टू कैरी इट. नहीं तो आप देखो हमने अननेसेसरली बहुत लोगों का भर लिया है.
0: अच्छा, वो जैसे हैं वो अपने परिपेक्ष में तो सही है,
1: सही है.
0: हम हमेशा दूसरे को ऐसे
1: जजमेंट हो.
0: हाँ वही, जो मैं एक्चुअली आई लाइक दैट थिंग यू नो, कि जो चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही है उसको मैं एक जजमेंटल बन जाता हूँ कि वो चीज ही अच्छी नहीं है. यू नो दिस इज एक्चुअली द मोमेंट वी रियलाइज दिस डिफरेंस.
1: माई डिसलाइक एंड जजमेंट, ये दो डिफरेंट चीज है.
0: आई डिसलाइक दैट थिंग बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स बैड.
1: इट्स बैड, या इट मे बी गुड फॉर देम.
0: इनफैक्ट इट्स अमेजिंग यू नो, अगर हम रिश्तों को सचमुच में देखें कि हमने क्या किया हुआ है और उसको सॉर्ट आउट करने का भी प्रोसेस हमारे ही हाथ में है. थैंक यू सो मच सीता शिवानी. हर बार हम देखते हैं कि जिंदगी आसान होने का एक माध्यम है कि अगर हम थोड़ा सा अपना जो कलर है वो एक सारे चश्मे उतार के, सारे लेबल्स उतार के क्लैरिटी से देख पाए, और वो हमें ज्ञान से मिल रहा है, परमात्मा का ज्ञान जो मिलता है. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, स्वागत करते हैं आपका. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अब एक निंदित ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन रिश्तों को एक नए रूप में देखने का ये प्रोसेस, ये खोज चलती रहेगी. अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वादा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 900।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी की मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वध दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
4: सत श्री अकाल, शुभ होए बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: पांडे जी, क्या तू साला लग पाए हो यार?
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है,
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: JBCO Films लेके आए एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हाथ आज।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उठों भी मुड़ के हूँ, जितों कोई नहीं मुड़ के होगा।
3: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
5: हुन वेखना ना भुल्लियो, 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
7: सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल, तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
4: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
5: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.
6: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: समझ पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 में, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक। हमें डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: जब चाहे

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस करियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद, हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी, स्पेशल ऑफर

जड़ मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों ने नो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।